न पाप न सुख और न दुख, न मंत्र न तीर्थ न वेद और न यज्ञ, न मैं भोजन हूँ न खाया जाने वाला और न खाने वाला, मैं चैतन्य रूप आनंद, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ।

ना मेरा कोई पिता है ना कोई माता, ना मेरा जन्म हुआ ना मेरा कोई भाई है ना कोई मित्र।

सर्वगत सर्वव्यापक सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। न मुझमें मुक्ति है और न बंधन। मैं चैतन्य रूप आनंद हूँ। शिव हूँ, मैं शिव हूँ।